0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
2: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557। अनाज मार्ट।
1: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाना चाहुंदे हो तां ए सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882।

0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ
2: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइफ CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
3: Listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 Every minute.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: Real news, real impact. Showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Encouraging community, culture and unity. CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बैठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है।

सुरमा सुरमा सुरमा कुड़िए अखा वाला जहर कुड़े दिन विच लगे रात रात जई बनकी सिखर दोपहर कुड़े पैंदा ए लचका।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा।

0: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: Tere jaisa kisi ne kahin aaj tak koi dekha nahi. Tujhko pa lene ki ab kisi haath mein koi rekha nahi. Teri aankhon ka sahil hi to meri manzil hai tu mil na mil. Tere honton ka dil mustaqil dil ka qatil hai tu mil na mil. सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स दे पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल्स, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज़, बच्चों दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो तां भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 6475548 इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर। शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
2: जे बिजनेस का करना चाहते हो प्रचार, तो रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार। 416-716-7094 Monday to Friday 11 AM to 12 PM and 6 PM to 10 PM to see 24/7 IPTV TV अपने business की promotion करा सकते हो, आज ही call करो 416-716-7094।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% Canadian made, top quality sweets. Hun 3 locations to serve karde ne. 2 in Brampton, 1850 Albion Road, Etobicoke. Vadhere jankari layi call karo 416-213-1165 416-213-5.
1: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 इवनस रोड जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल
3: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज विजडम टूथ रूट कनाल डेंचर
4: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन क्लीनिंग गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट
2: SM Springdale Dental Center 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट ब्रैम्पटन बोवेट जिंगूसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव यूनिट 17 ब्रैम्पटन कॉल 9057898266।
5: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाजमार रोजी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाजमार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 9059288 8557 अनाज मार्ट।
6: जे कलोटी दा पैगाम वड़े सारिया दे नाल जेकर ट्रैफिक टिकट स्मॉल क्लेम सिटी बायलॉज जां मकान मालक किराएदार दे पौणियां च फस गए हो तां साडे कई वरिया दे माहर तजुर्बे दा फायदा लवो जे कलोटी अजिहा ना तुहाडी मुश्किल कर देंदा आसान ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा जे कलोटी योर रिकॉर्ड मैटर्स यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर नाउ न्यू लोकेशन 7920 हुरंटारियो स्ट्रीट यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन 9057956 दैट्स 9057905656 Jay Kaloti, tried, trusted, most effective.
7: ओ हेलो यार मेरा भी लोड ले जी ट्रक फिर खड़ गया यार
8: ओ भरावा हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
7: सच्ची
8: ओ मुच्ची
7: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
8: इना कोला सालां दा तजुर्बा
7: हुन एड्रेस भी लिखा
8: ले लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबिकोक यूनिट 5
7: कॉल 6479256 4770692 57।
1: लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमां नु समय ते करवाउन लई चेती रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन वधेरे जानकारी लई कॉल करो 6472717135 6472711735 एनी टाइम होम रेनोवेशन
9: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो सस्ता

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Vishwas प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सोखा मारो एक आवाज अजे हे कमावास दे रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डिक्लेरेशन जा स्पोंसरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले

0: महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी वाला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना, 100 तो हजार बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9999।
0: स्वीट महल।
3: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: रख दिता सीगा जिदे प्यार ने वगाड़ के मिलिया कि मेनू अज आदतां सुधार के मिलिया कि मेनू अज आदतां सुधार के।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे चांद को चाह बैठे कौन होगा हम सब पागल जमाने में दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे

घड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए। मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेती रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।
2: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार, तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन लई आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM। तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
3: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.

0: फिर हुड़प लियो ना प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
1: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
0: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे।
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 7198 एयरपोर्ट रोड, माल्टन, इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 905-671-4290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ, 6477-708-0079। 6477-708-0079।

0: 1848 1847 वॉशरूम स्पेशलिस्ट थी पील रेनोवेशन
1: सॉलिड बम्पर चमका मारे मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे
2: मठारू वेल्डिंग वाओ मूस बम्पर डियर बम्पर डीजल टैंक लॉक ड्रिलर रैम्प टायर रैक ट्रेलर रिपेयर अल्मीनियम प्लेट बम्पर
3: कॉल सनी मठारू
2: 647-63-55-647-460-6355
3: मठारू वेल्डिंग यूनिट 198 रदरफोर्ड
1: मठारू वेल्डिंग
0: नुड़करो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी इंडियन स्टाइल कईयां दातियां रंबे खुरपे तंगलियां फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े कुर्सियां टेबल पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो साग बनया बनाया भी मिलदा है जिन्ना मर्जी लाओ या घर लिया के साग तुसी खुद बनाउणा है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड जानकारी लई कॉल करो 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰਾਸੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਡਰਾਮੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 6475545859
4: ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ
5: ਓ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री तो बनवाई
6: जिथे तुहानु मिलेगी हर तरह दी मिठाई
7: इना दी क्लीन एंड हाइजीनिक फैक्ट्री हर एक मिठाई बड़े प्यार नाल बनाई जांदी है प्योर एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स दे नाल
6: अवेलेबल एट ऑल थ्री लोकेशन ब्याह शादी ते खास प्रबंध है तुसी अपने ब्याह या इवेंट दी डेट फिक्स करो बाकी समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तैयारी पूरी है कॉल एट 416-213-1165 416-213-1165 समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री
8: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावा दा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चा लई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
9: वाह भाभी जी मुबारकां तुहाडा घर ते बहुत शानदार है कारपेट्स वुडन सब कमाल दे ने लगदा है काफी खर्चा कीता है
10: ए कमाल है जी जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान वड्डे शोरूम ते आओ हार्डवुड कारपेट लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत लार्ज वैरायटी पाओ कॉल करो नव बराड़ नु 905-605-4005 905-605-6605
11: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा
12: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा
13: घर होवे या ऑफिस ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलेडन पेविंग
14: एक्सेस रैंप्स एक्सकावेशन ग्रेडिंग रीसर्फेसिंग ओवरले फार्म ड्राइववे पेविंग ये सब कर देने आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु इट्स 416-818-8900
13: और विजिट www.kalidanpaving.com
0: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो कसूर तो हड़ा है या नहीं तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन उपरों इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए चीचियां ना वटो बस एक नाम याद रखो किसी भी तरह दे एक्सीडेंट हो ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ 1800-567-HURT4878 ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ 416-557-5010 416-557-5010 ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ
15: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320